देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, बचपन में हम सब ने मिट्टी के घरौंदे बनाए थे। हम धूल इकट्ठा करते थे, उसे पानी से सींचते थे और एक महल खड़ा कर देते थे। फिर ज़रा सी हवा आती या किसी का पैर लगता और वह महल वापस धूल बन जाता। तब हमें दुख नहीं होता था क्योंकि हम जानते थे कि यह खेल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम भूल गए कि हम भी एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। कबीर साहब आज हमें उसी बचपन की धूल की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना शरीर कहते हो, जिसे तुम अपनी पहचान कहते हो, अब असल में क्या है? आज का दोहा परम सत्य की उस धूल की बात करता है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। आइए जानते हैं इस पुड़िया का सच क्या है। कबीर धूली सकेली, कबीर धूली सकेली करी पुड़ी जे बांधी एह, दिवस चारी का पेखणा अंति खेह का खेह। कबीर धूली सकेली पूरी जी बांधी एह, कबीर धूली सकेली पूरी जी बांधी एह, दिवस चारी का पेखणा अंतिखे का खे। हरे साधो अंतिखे का खे। यह दोहा मिट्टी की महिमा और अस्तित्व की वास्तविकता का चरम है। इसमें उन्होंने मनुष्य के इस अहंकार को, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, महज एक मिट्टी की पुड़िया बताकर जीवन के सारे ताम झाम को समेट दिया है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सादगी से जीवन का दर्शन कह देते हैं। कबीर धूली सकेली करी, वह कहते हैं कि उस परमात्मा ने थोड़ी सी धूल अर्थात मिट्टी इकट्ठा की और पुड़ी बांधी यह, उसकी एक पुड़िया बांधी। यह हमारा शरीर क्या है? पांच तत्वों की मिट्टी से बंधी हुई एक छोटी सी पुड़िया ही तो है। दिवस चारी का पेखना, यह पुड़िया थोड़े दिन इधर उधर डोलती हैं, बातें करती हैं, रिश्ते जोड़ती हैं और हमें लगता है कि यह तमाशा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कबीर अंतिम सत्य की चोट करते हैं, अंति खेह का खेह। खेह यानी धूल या राख। अंत में यह पुड़िया खुलेगी और इसकी मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूल हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर थोड़ी सी रेत को समेट कर एक टीला बना देती हैं और अगली लहर आते ही वह टीला फिर से समतल समुद्र की रेत बन जाता है। हमारी हस्ती भी समय की लहर पर बनी मिट्टी की उस ढेर जैसा ही है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने गुरूर को देखिए। हम किस बात पर अकड़ रहे हैं? इस पुड़िया के रंग पर, इसकी ताकत पर या इसमें भरी हुई हवा पर? जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा अंत खेह यानी धूल ही है, तो हमारे भीतर से दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या खत्म होने लगती हैं। फिर हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी उसी मिट्टी की पुड़िया है जिससे हम बने हैं। आज कोशिश कीजिए उस मिट्टी से जुड़ने की। सादगी में रहिए, प्रेम बांटिए और याद रखिए कि तमाशा खत्म होने पर हम सबको उसी ज़मीन का हिस्सा बन जाना है। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है उसे टूटने का डर नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
2: हाय, मी आर्जेस्वरा, अपन ट्यून केले रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, बचपन में हम सब ने मिट्टी के घरौंदे बनाए थे। हम धूल इकट्ठा करते थे, उसे पानी से सींचते थे और एक महल खड़ा कर देते थे। फिर ज़रा सी हवा आती या किसी का पैर लगता और वह महल वापस धूल बन जाता। तब हमें दुख नहीं होता था क्योंकि हम जानते थे कि यह खेल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम भूल गए कि हम भी एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। कबीर साहब आज हमें उसी बचपन की धूल की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना शरीर कहते हो, जिसे तुम अपनी पहचान कहते हो, अब असल में क्या है? आज का दोहा परम सत्य की उस धूल की बात करता है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। आइए जानते हैं इस पुड़िया का सच क्या है। कबीर धूली सकेली, कबीर धूली सकेली करी पुड़ी जे बांधी एह, दिवस चारी का पेखणा अंति खेह का खेह।

0: दिवस चारी का पेखणा अंतिखे काखे हरे साधो अंतिखे काखे। यह दोहा मिट्टी की महिमा और अस्तित्व की वास्तविकता का चरम है। इसमें उन्होंने मनुष्य के इस अहंकार को, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, महज एक मिट्टी की पुड़िया बताकर जीवन के सारे ताम झाम को समेट दिया है। श्रोताओं, कबीर साहब कितनी सादगी से जीवन का दर्शन कह देते हैं। कबीर धूली सकेली करी, वह कहते हैं कि उस परमात्मा ने थोड़ी सी धूल अर्थात मिट्टी इकट्ठा की और पुड़ी बांधी, यह उसकी एक पुड़िया बांधी। यह हमारा शरीर क्या है? पांच तत्वों की मिट्टी से बंधी हुई एक छोटी सी पुड़िया ही तो है। दिवस चारी का पेखना, यह पुड़िया थोड़े दिन इधर उधर डोलती हैं, बातें करती हैं, रिश्ते जोड़ती हैं, और हमें लगता है कि यह तमाशा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कबीर अंतिम सत्य की चोट करते हैं, अंधी खेह का खेह। खेह यानी धूल या राख। अंत में यह पुड़िया खुलेगी और इसकी मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी, धूल धूल हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर थोड़ी सी रेत को समेट कर एक टीला बना देती हैं और अगली लहर आते ही वह टीला फिर से समतल समुद्र की रेत बन जाता है। हमारी हस्ती भी समय की लहर पर बनी मिट्टी की उस ढेर जैसा ही है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने गुरूर को देखिए। हम किस बात पर अकड़ रहे हैं? इस पुड़िया के रंग पर, इसकी ताकत पर, या इसमें भरी हुई हवा पर? जब हम यह जान लेते हैं कि हमारा अंत खेह यानी धूल ही है, तो हमारे भीतर से दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या खत्म होने लगती हैं। फिर हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी उसी मिट्टी की पुड़िया है जिससे हम बने हैं। आज कोशिश कीजिए उस मिट्टी से जुड़ने की। सादगी में रहिए, प्रेम बांटिए, और याद रखिए कि तमाशा खत्म होने पर हम सबको उसी ज़मीन का हिस्सा बन जाना है। जो मिट्टी से जुड़ा रहता है उसे टूटने का डर नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आरजे स्वरा। आपण ट्यून केले रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।